आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

एम ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगे। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या कितना बुरा कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और यह समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें और वो जो पिता हैं, भाई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। Ladies first.
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
2: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं। और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है। और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
2: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
2: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग परनीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
2: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज़ में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
2: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
2: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। आप सभी को नमस्कार, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जो भी अपने बारे में सोचा है, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सफल बस वही होते हैं जो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सिर्फ मेहनती नहीं होते हैं बल्कि उनमें कुछ अच्छी आदतें भी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट के बारे में, यानी कि सफल छात्रों के आदतों के बारे में। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अच्छे मार्क्स लाए और अपने सपनों को पूरा करे, हर कोई चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है, यानी कि सिर्फ समझदारी होशियारी से आती है? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा राज होता है आदतें। जी हाँ, आपकी आदतें कैसी है, आपके हैबिट्स कैसे हैं, तो आज हम जानेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में कौन कौन सी आदतें होती है जिसे आप ही अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सफल होना क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता है कि किसी एक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सफलता का मतलब है कि उन्हें कोई उनका ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए सफल होने का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, काफ़ी है। लेकिन किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हर एक सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वो होता है मेहनत और सही आदत। जी हाँ, मेहनत और सही आदतों का ही रिजल्ट होता है सफलता। और आज हम इसी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लिया है हमने कि सक्सेस क्या है, अब हम जानते हैं कि सक्सेस आता किसके साथ है। कहते ना कि बिल्कुल एक फिक्स पैकेज होता है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आना ही चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है टाइम मैनेजमेंट। वो अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं, जो आजकल बहुत सारे बच्चों की परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो सोचते हैं कि आज मूड नहीं है, या फिर आज नहीं, कल से पढ़ेंगे, एक घंटे बाद पढ़ेंगे, और वो कल, वो एक घंटे बाद कभी आता ही नहीं है। अगर आप हर रोज 2 घंटे फोकस करके पढ़ते हैं तो आपको जो लास्ट टाइम पे आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं ना, उसे कहीं ज़्यादा हर रोज 2 घंटे इफेक्टिव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना डेली शेड्यूल बनाएं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स रखें और साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। हर रोज आप टू डू लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। बाकी सारे काम नहीं भी होंगे तो चलेगा, और हर रोज आप उस पर टिक लगाइए कि हाँ, मैंने आज जो अपनी प्रायोरिटी थी उसे मैंने कंप्लीट की है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके रूम में आपने देखा होगा एक व्हाइट बोर्ड रहता है, उस पर वो लिख देते हैं कि कल उन्हें क्या करना है और फिर उस पर टिक करते हैं कि हाँ, मैंने ये काम भी कर लिया, मैंने ये काम भी कर लिया। यह आदत अच्छी होती है। और अभी मैंने कहा ना कि हर रोज आप 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप, लास्ट टाइम में आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, बस हर रोज पढ़िए। तो इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्मार्ट स्टडी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। जो भी सफल विद्यार्थी होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज पढ़ते हैं। कभी भी पढ़ना मिस नहीं करते कि हाँ ठीक है आज नहीं पढ़ाई की, कल नहीं पढ़ाई की, परसों नहीं पढ़ाई की, तरसों पढ़ लेंगे चार घंटे, नहीं होता ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुश्किल तब भी होता है अगर आपने अपने गोल्स क्लियर नहीं रखे हुए हैं। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगी, जाहिर सी बात है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से शहर जाना है तो आप ट्रेन कौन सी लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको जब पता ही नहीं होता है कि आपका गोल क्या है तो आप उसके लिए काम कैसे करेंगे, उसके लिए पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने गोल को क्लियर रखें, तभी आपके डायरेक्शंस भी क्लियर होंगे। और कुछ लोगों के गोल होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो कि हर रोज़ अपना गोल फिक्स करते हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, या फिर वीकली बेसिस पे वो बनाते हैं कि इस वीक में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि उन्हें पता होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। आपने हो सकता है कि अभी आपने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, किसी एक एग्ज़ाम के बारे में आपने नहीं सोचा है, बस आप अभी अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। दोनों ही गोल आपने फिक्स किया हुआ है, दोनों ही गोल के लिए आप काम करेंगे, और दोनों ही गोल के लिए जब आप काम करते हैं तो आप सही दिशा में पहुंच ही जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, गोल होना चाहिए। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है डिस्ट्रैक्शंस। गोल बना लिया आपने, टू डू लिस्ट बना लिया, लेकिन आपकी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शंस है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से हम दूरी कैसे बनाएं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इनका बहुत ही लिमिट में इस्तेमाल करते हैं। वो फ़ोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, ना कि फ़ोन के गुलाम वो बन जाते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे फ़ोन के गुलाम बन गए हैं, फ़ोन के हिसाब से सोते हैं, जागते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे होता है तभी उन्हें ध्यान आता है कि अरे मैं करियर का क्या करूं, मैं क्या कर रही हूं अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही फ़ोन चार्ज हुआ वो भूल जाते हैं कि अभी हमें अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। और सोशल मीडिया ने तो इस तरीके से बहकाया हुआ है कि क्या ही कहने। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी होता है कि आप मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना कर रखें, उन्हें यूज़ करें पर लिमिट में करें। और पढ़ाई के समय में तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखिए, उसे दूर रखिए, नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, और ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए और ख़ुद को समझा लीजिए कि ब्रेक के टाइम पे ही फ़ोन का इस्तेमाल करना है। जब पढ़ाई कर रहे हो तब फ़ोन का नो यूज़, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस दस्तक देगी। और जब सक्सेस दस्तक देती है तो उसके पहले बहुत सारी असफलताएँ भी रहती है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप फेलियर से नहीं डरते हैं, तो फिर आप रेस में लंबे टिकते हैं। हर स्टूडेंट कभी ना कभी फेल ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कभी ना कभी उसके जीवन में एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब वो हार जाता है। लेकिन वो हार मानता नहीं, डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जो फेलियर है ना, अंत नहीं है, वो एक सबक है। इसलिए नेगेटिव सोच से बचे, खुद पर विश्वास रखे और खुद के हेल्थ को भी बनाए रखे। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। वो प्रॉपर नींद लेते हैं, जी हाँ, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही हेल्दी खाना भी ज़रूरी होता है और एक्सरसाइज करना तो बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोइए, हेल्दी खाना खाइए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना बंद मत कीजिए। पर ध्यान रखिए कि आप कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों से मिलेंगे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हैं पर मोटिवेटेड तो हैं कम से कम, और वो अच्छे हैं, वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो फिर ऐसे दोस्तों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं आप ऐसे दोस्तों से मिलेंगे जो कि खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार गेम में लगे हुए हैं या फिर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो आदतें आ जाएंगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने, आप समझे कि आपके दोस्त कैसे हैं। आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको इंस्पायर करे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, रहिए, आप अपने गोल्स क्लियर रखिए और डिस्ट्रेक्शंस को बिल्कुल दूर रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो यकीन मानिए सफलता आपके पांव ज़रूर चूमेगी और आपके कदमों में बिछ जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान, तो याद रखिए सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ये हर रोज़ की आदतों से बनती है। आज आप जो कर रहे हैं वो कल के किसी क्षण को तय करने वाली है, तो आज ही एक छोटी सी अच्छी सी आदत शुरू करें और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच जाएं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके काम आएगा और आप अपना और अपने अपनों का और अपनी पढ़ाई का, अपने सपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि बिना सपनों के जीना बहुत मुश्किल होता है, सपने रखिए, सपनों को पाइए और जो सपनों को पाने की आग होती है ना, वही हमें जिंदा रखती है। जिंदा रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने

की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूलें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है और अनुशंसित मक्का की किस्में है सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें और खरपतवार नियंत्रित रखें। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 8:30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर लें जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियाँ होती है, ऑटो इम्यून बीमारियाँ जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखे, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट,
1: राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों, जिसका इंतज़ार आपको रहता है और वो कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन रहे हैं, और इसमें आज हम दालों के बारे में जान रहे हैं, यानी दाल, आज अरहर दाल के बारे में हम जानेंगे। आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और साथ ही अरहर की खेती के लिए आपको कौन सी भूमि चयन करनी चाहिए, कौन से प्रभेदों को आपको लेना चाहिए, इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से, सारी चीज़ें आज आपको अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा यह भोजन का अभिन्न अंग है। दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है। भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन खनिज एवं विटामिन्स की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है। अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अरहर प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। अरहर सूखा प्रतिरोधी जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
5: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं, और अब खेती की बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भूमि का चयन तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो।
4: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग को ध्यान रखने की बात है, और भूमि का चुनाव करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा और समतल हो जिससे जल निकास अच्छी हो। बिहार में अरहर प्राय मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट या अथवा दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम मानी जाती है। और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अरहर की फसल उगाने के लिए खेत को की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। दो तीन बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ अधिक वर्षा होती हो वहाँ रेस्ट बेड जैसे हम लोग कहते हैं उठी से या बनाकर या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा। आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो मेर पर है वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं।
5: तो ये थी कुछ बातें जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
4: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिहार में अभी भी कि मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती दो समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितंबर के समय में। तो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई। उसमें हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA 203 यह प्रभेद अभी नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में दो रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, यह IPA 206 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर एक है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार उषा 9 नरेंद्र अरहर की खेती मालवीय अरहर 13 जैसे प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा सामान्य आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है, तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं। और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में दो प्रभेद अनुशंसित है, पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद, जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
5: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जिससे कि उनको इसकी खेती करके लाभ हो।
4: अरहर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी फसल अच्छी उपज लेने के लिए बीज दर के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे सामान्यतः अरहर की बुआई में हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से बुआई करनी चाहिए, और यदि हम लोग सितंबर अरहर लगाते हैं तो उसमें हम लोग को बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी होगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि बहुत से रोगों को बचाने के लिए टीका लगवाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी फसलों में रोग व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोग के को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेबेस्टिन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेबेस्टिन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए यदि हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इससे गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। और जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं, तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घड़े में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छाह में सुखा देना चाहिए। जहां तक संभव हो बीजोपचार सायं काल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को PSB कल्चर जिसको फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवोर में खरीदा जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही PSB कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो नेत्र जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समानांतर परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए। और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है, तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40-50% की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पिंडी मेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमीजा थाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
5: तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपने जाना कि आप बीज उपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब, रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
4: किसान भाई, अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15-25% तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण कैसे पहचानें। सामान्यतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4-5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में ये रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, देखिएगा तो वो मुरझाकर सूख जाते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी की कमी के कारण ये मुरझा गए हों, जबकि वास्तव में खेतों में पर्याप्त नमी होती है। रोगी रोधी के तने का निचला भाग तथा संवहन उत्को जिससे उसको पानी और भोजन के जाता है, जिससे उसका रंग भी काला पड़ जाता है। यदि रोगी रोधी पौधे को उखाड़ कर उनकी जड़ों को चीर कर देखा जाए तो उन पर पतली पतली कालियां धारियां दिखलाई पड़ती है। यदि रोगी रोधी पौधे के तने की लंबाई को चीरा जाए तो उसमें से काली धारियां दिखाई पड़ती है, जो कि भूमि की सतह से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग इस जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल जैसे 4-5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक्र तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं, जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोजैक रोग है। इसमें इसके लक्षण होते हैं, रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्राय पौधे की कुछ शाखाएँ रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएँ से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो इमीडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वह पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं जिनकी पीठ पर गहरी भूरी रेखाएँ दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को ग्रीष्म गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमेन फंदा जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा कर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं जिससे कि वो हमारा जो जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लियो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं जैसे जैविक दवा है NPB 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से NPV वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद NPV का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव फली बनाते समय करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये इस विधि से यदि हम लोग अरहर की खेती करें तो अरहर फसल की पैदावार जो हमारा जो उन्नतशील प्रभेद है जो उससे हम लोग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
5: तो यहाँ पर आपने जाना अरहर के बारे में, अरहर की खेती और वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी खेती में ज़रूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि
6: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
7: जी
6: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
7: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
6: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8-30 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गला घुटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना?
2: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं।

0: കൃഷി. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में. तो आप सभी को बता दो किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं. और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें. तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो. तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएन राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में.
1: थैंक यू मैडम.
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं.
1: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राय सिस्पा, सैनिक कीट, धान की बभनी, धान का केसवर, धान का लपेटक, धान का पतंगा आदि कीट प्रमुख हैं. कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशकों के संबंध में जानकारी आवश्यक है. इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है. पहला कि धान की तनाभेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है. वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है. मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है. एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है. इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं. ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है. इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं. बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं. दाना खखड़ी हो जाता है. महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना बेधक कीट का आक्रमण अधिक होता है. यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए. प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके. पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस, जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तनाबेधक से बचाया जा सकता है. तनाबेधक के व्यस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है. तनाबेधक कीट को अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें. तनाबेधक के आर्थिक क्षति होने पर काटा फाइडोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें. असिंचित दशा में काटा फाइडोक्लोराइड 25 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस्फोटी इसी दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, धान का मधुआ कीट, यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है, जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन: प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हील 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 SL 250 मिलीलीटर, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
0: और सर, आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और आपने बताया तना बेधक के बारे में। तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको, तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है। और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावा अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका, डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट, और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं, तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है। और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
1: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष दुर्गंध आती है, जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25-30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं व्यस्क दोनों की अवस्था में फसल को दुधावस्था में दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों में एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट की आक्रमण आघात प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट की आक्रमण हो जाता है उस खेत में धान के चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक पाया जाता है। प्रबंधन, खेत के मेड़ों को खरपतवार नौ गुने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खरपतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में चार प्रकाश प्रपंच, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक कीट, इस कीट के भारत में कुल चार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार

0: कीट के शिशु अब्लिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। देने के लिए ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोपोस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया, इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती है और इसके अलावे मैं बता दूँ कि इनके पंखों पर भी काली जो धारियां हैं वो पाई जाती हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खरपतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए और क्योंकि उससे कीट पतंग जो हैं उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी है हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत नाशक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है।

0: जाए।
1: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूलें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 8-30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का, कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, जो ले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली तक. और हरियाली की बातें हम करते हैं और उसमें खेती बाड़ी की बात ना करें तो थोड़ा अधूरा बिल्कुल रहता है. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर. जी हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की खोज कर रहे हैं और उसी में से एक है डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड और साथ ही मृदा सूचना प्रणाली. आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी अगर आप हमारा आज का ये वार्ता सुनते हैं तो. जी हाँ, इस खास विषय को आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नींटू मंडल. और मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल यानी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब से हमारे जो सवाल है वो ये है कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है वो बताएं हमारे सभी श्रोताओं को.
1: नमस्कार. मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बारे में आप लोग पहले से ही जानकार है. ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय से चलाया जा रहे पूरा देश में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम.
0: जी,
1: सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का क्यों जरूरत हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कृषि में मृदा एक ऐसा मीडियम है जिसका ऊपर कोई भी तरह का फसल, कुछ भी फाउंडेशन हम लोग करते हैं, लेकिन मृदा को सटीक उपाय में उसका मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए. इसलिए मृदा का सटीक उपाय में उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है.
0: मतलब उनकी देख रेख करना, टेस्ट करना कि इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या कुछ पोषक तत्व की कमी है या फिर किस प्रकार इसमें ज़्यादा लवण है, ये कुछ इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं.
1: हाँ, जैसे हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही थर्मामीटर से टेम्परेचर, उसके बाद ब्लड शुगर, इस टाइप का टेस्ट होता है.
0: जी जी,
1: सेम वे में मृदा में भी
0: लैब से टेस्ट होता है. जी,
1: टेस्ट होता है अगर मृदा स्वस्थ है कि नहीं, ये देखने के लिए बहुत पैरामीटर है. तो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में ऐसा 12 पैरामीटर है.
0: अच्छा.
1: इसके अंदर में फास्ट है पीएच. पीएच का मतलब है मृदा आम्लिक है कि अल्कलाइन है.
0: अच्छा.
1: वो देखने के लिए फिर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो भी मृदा में नमक का मात्रा ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम होता है, वो देखने के लिए है. ऐसे पोषक तत्व में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी एलिमेंट जैसे गंधक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे लोहा, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरन, ये सब कुल मिला के 12 पैरामीटर है जिसका मात्रा कितना है मिट्टी में और उसके बाद जो फसल उगाया जाएगा उसमें भी कितना जरूरत होगा. तो जो मिट्टी में है और जितना जरूरत होगा दोनों का माइनस करके उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है. तो इसके लिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरा देश में चलाया जा रहा है. हमारा बिहार में भी इसका हर जिला में ये प्रोग्राम चल रहा है. उसमें हमारा यूनिवर्सिटी, इसका कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जितना है, इसके साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट का भी जितना लेबोरेटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो भी इसमें शामिल है. एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसका लाभ हमको लगता है किसान भाई लोग ऑलरेडी ले रहे हैं.
0: तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपने जाना कि जो मृदा को हम समय समय पर उनका टेस्ट करते रहें कि ये स्वस्थ है या नहीं, और तब अगर हम फसल उस पर उगाते हैं तो ज़रूर मुनाफा होगा और आपको कोई भी हानि नहीं होगा क्योंकि पहले से जो प्लानिंग की जाती है सारी चीज़ें देखकर तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से होता है और सफल खेती आप कर सकते हैं तब. और इसका उपयोग डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक तो 12 पैरामीटर का मात्रा रहेगा, उसके बाद एक कितना खाद, कितना कंपोस्ट डालना चाहिए इसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा.
0: अच्छा.
1: यानी कि साइंटिफिक बेसिस में जो खाद उपयोग, उसका सटीक विधि, कौन सा टाइप का खाद डालना है, कौन सा फसल के लिए, तो उसका भी रिकमेंडेशन रहता है. पहले जैसे हम लोग बताए थे पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक है, आम्लिक है मिट्टी, उसको सुधार डालने के लिए भी चूना का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करना है, उसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा। जैसे जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है, सलाइन है, उसको भी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसमें रहेगा। उसका मतलब है से पोषक तत्व प्रबंधन ही नहीं, मृदा में अगर प्रॉब्लम होगा उसमें भी सुधार लाने के लिए क्या हमको डालना होगा, इस कौन सा उत्पादन होगा, उसका मात्रा कितना होगा, ये भी उसमें रिकमेंडेशन लिखा रहेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का यूज करने से लॉन्ग टर्म में सटीक उपाय में मृदा को ठीक रखते हुए अच्छा पैदावार हम लोग ले पाएंगे।
0: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सिर्फ उसमें टेस्टिंग ही नहीं की जाती कि उसमें क्या कमी है या फिर ज़्यादा एसिडिक है, लवणीय है, उसको आप एसिडिक को फिर एसिडिक अगर आपका मिट्टी है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एसिड कम कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देते हैं, हमारा टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया जाता है। साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक जो है फिर आपको बताते हैं कि कैसे, अगर ज़्यादा लवणीय है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, सारी विधियाँ आपको बताई जाती है। तो ये तो बात हो गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। डॉक्टर साहब अब बात करते हैं डिजिटल, आज वैसे भी देख रहे हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसे भी जोड़ा गया है, तो क्या है ये डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड?
1: डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये भी भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय का एक नया स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कोई भी किसान का, जैसे एग्जांपल ले लीजिए भागलपुर जिला का साबोर एरिया में कोई किसान, उसका खेत में मिट्टी का नमूना लिया गया
0: जी।
1: तो जब नमूना लिया जाएगा तब उसका जीपीएस मोबाइल में भी अभी उपलब्ध है, उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद फिर जिस किसान का खेत में जीपीएस से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके नमूना लिया गया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण वो पोर्टल में एक अवेलेबल है
0: जी।
1: उसके बाद नज़दीक कौन सा एरिया में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल में अवेलेबल है, जैसे भागलपुर जिले में और हमारा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान विभाग में भी लैबोरेटरी है। कितना नज़दीक में आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंच सकते हैं ये भी इंफॉर्मेशन उस वेब पोर्टल में अवेलेबल है। उसके बाद उसका प्रयोगशाला में जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया जो टेस्ट करेंगे वो उस वेब पोर्टल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर कोई किसान उस पोर्टल में ये वेब पोर्टल का एड्रेस भी आप लोगों को हम बता देते हैं, ये जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का ये वेब एड्रेस है www.soilhealth.dac.gov.in। ये गूगल में भी सर्च किया जाएगा तो ये सॉयल हेल्थ वेब पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें क्लिक करके एक किसान पोर्टल है उसके थ्रू में जो नमूना लिया गया है, किसान का नाम, जिला का नाम, उसके बाद साबोर ये नाम देके किसान का नाम देने से वो पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि 12 जो पैरामीटर है कौन सा कितना मात्रा में है। उसके बाद उसमें ऑप्शन है, अगर क्लिक करेंगे किसान भाई लोग, जैसे इसके बाद हमको धान लगाना है और गेहूं लगाना है, उसके हिसाब से फिर कितना खाद डालना पड़ेगा, खाद डालने के लिए भी एक तो रिकमेंडेशन आएगा। उसके बाद मान लीजिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसी टाइम में डीएपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यूरिया है और म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपका जिला में अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम में आप लोग पता कर सकते हैं। उसका मतलब है ये जो डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसका थ्रू से एक स्पेसिफिक आपका लोकेशन में किसान का नाम, उसका मिट्टी में क्या क्या चीज है, क्या उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद ये कोई खाद आपको कहाँ मिलेगा, नियर बाय कौन सा एरिया में मिलेगा, उसका भी कीमत कितना है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म में
0: जी।
1: तो ये राष्ट्रीय लेवल में बनाया गया है, हमारा बिहार स्टेट ही नहीं पूरा देश का जितना राज्य है सबका इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा
0: जी। तो ये फायदे हैं कुछ डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के किसान भाइयों। और तो क्या पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध है डॉक्टर साहब?
1: पूरा देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है
0: जी।
1: ये भी जो वेब एड्रेस पहले मैंने बताया उसमें अवेलेबल है, उसके अंदर में साइंटिफिक तरीका से जो खाद कितना मात्रा में डालना होगा ये रिकमेंडेशन अवेलेबल है। उसके इतना नहीं, उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है स्पेसिफिक कुछ एरिया में। जैसे कि ऐसा एरिया कुछ हो सकता है जिसमें जिंक का कमी बहुत है, ऐसे बहुत नहीं होता है, किसी में लोहा का कमी है, किसी में बोरोन का कमी ज्यादा है, वो भी आपको डिजिटल में दिखाएगा। उसके बाद उस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कोरोना का टाइम में आप लोग सब जानते हैं टेलीमेडिसिन शुरू हुआ था, उसमें डॉक्टर को फोन करके हम लोग पूछ सकते थे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहे तो हमको क्या करना चाहिए। सिमिलरली इसमें स्पेसिफिक अगर कोई पोषक तत्व का आपका कमियां है और किसमें बहुत ज्यादा होगा यानी कि टॉक्सिक लेवल में है, उस केस में भी क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ये नंबर भी अवेलेबल है
0: जी। तो इसके बाद बात करते हैं हम मृदा सूचना प्रणाली की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो आप सभी जान गए होंगे, अब मृदा सूचना प्रणाली क्या है डॉक्टर साहब, ये बताएं सभी श्रोताओं को।
1: मृदा सूचना प्रणाली एक ये भी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मृदा सूचना प्रणाली में जैसे भागलपुर जिला का हम लोग उदाहरण लेते हैं, भागलपुर जिला में बहुत सारा ब्लॉक है, जैसे ये सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन चलाया जा रहा है तो पूरा जिला का एक डिजिटल मैप बनाया गया है। डिजिटल मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा बिहार राज्य का, पूरा देश का भी ऑफ डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये बनाया गया है। फर्टिलिटी मैप मतलब उसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जितना पैरामीटर 12 पैरामीटर है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस बोला जाता है, जीआईएस का माध्यम से ये मैप बनाया गया है। इस मैप से आपका मिट्टी का क्या स्टेटस है ये रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है सिर्फ एक बार भी नहीं, टाइम इंटरवल में इसका रिविजिट किया जाएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा, किसमें आप जो फसल उगा रहे जो रिकमेंडेशन दे रहे उसके बाद भी किस तरह का चेंजेस आ रहा है ये भी हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हमारा हेल्थ भी डायनेमिक स्टेटस का मतलब है आज ठीक है कुछ दिन के बाद खराब भी हो सकता है, इसलिए ऐसा भी मिट्टी का भी ऐसा हाल है, इसलिए इसको डायनेमिक प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का थ्रू से जोड़ के पूरा राज्य तथा पूरा देश में बनाया गया है।
0: मतलब उसमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ की कमी है, जो 12 पैरामीटर्स आपने बताए उस हिसाब से
1: उस हिसाब से प्लस टाइम स्केल में एक साल में दो साल में कितना चेंजेस आ रहा है।
0: मतलब एक बार ही सिर्फ वो डाटा उपलब्ध नहीं रहता है, उस रिन्यू होता जाता है।
1: रिन्यू होता है, इसलिए इसको रियल टाइम बोला जाता है
0: जी जी।
1: तो ये इंफॉर्मेशन आज हम लोग सब लोग परेशान है, सब लोग देख रहे हैं क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या इम्पैक्ट सबका ऊपर आ रहा है। एग्रीकल्चर में भी बहुत क्लाइमेट चेंज का प्रभाव फसल का पौधावर में भी आने वाला है, तो इसलिए मृदा भी ये जो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो सॉयल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम बेसिस में ये पूरा देश जैसे हमारा देश में है ऐसा करके पूरा वर्ल्ड में भी ये चलाया जा रहा है, उसमें भी हमारा देश एक पार्टनर है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी खासियत के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने बता दिया कि इसके क्या कुछ फायदे हैं, लेकिन किसान भाइयों को थोड़ा समझाएं कि क्या खासियत है मृदा सूचना प्रणाली की।
1: मृदा सूचना प्रणाली का खासियत पहले जैसे हम लोग डिजिटल सॉयल हेल्थ कार्ड में पहले भी चर्चा किए है, इसमें जो वेब एड्रेस मैंने बताया था उसमें जो एक किसान पोर्टल है जिसमें जाकर आपके पास आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: उसमें जैसे नमूना पंजीकरण मोबाइल ऐप
0: का कोई नाम है होगा?
1: नहीं, ये वेब पोर्टल जो सॉयल हेल्थ DAC.govin है और किसान का जो ऐप है इसका नाम है किसान सुविधा।
0: अच्छा, किसान सुविधा ऐप का नाम है।
1: हाँ, इसके अंदर में नमूना पंजीकरण, सॉयल हेल्थ जो टेस्ट रिपोर्ट इसका ऐप है, फिर सॉयल हेल्थ कार्ड ऑनलाइन नहीं एक ऑप्शन रखा, ऑफलाइन के लिए भी रखा गया है अगर कोई प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो। फिर किसान कॉर्नर में जाके आपका नमूना आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब आपका सैंपलिंग हुआ, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसमें प्रिपेयर हुआ कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, ये ट्रैकिंग किया जा सकता है। फिर आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। फिर जैसे बताया था कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा, किसका टॉक्सिसिटी है और डिफिशियंसी है, उसके लिए भी वो ब्लिंक करेगा। ब्लिंक मतलब रेड ब्लिंक करेगा, उसका मतलब है इसमें समथिंग प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिसिटी है और कोई डिफिशियंसी है ज़्यादा, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट ओपिनियन का ऑप्शन उसमें है। फिर फसल के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीन्स सटीक मात्रा में कौन सा टाइप ऑफ खाद देना है। सिर्फ खाद ही नहीं, उसके साथ अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है जैसे फार्मी कंपोस्ट है, फार्मी एंड मैन्योर है और दूसरा टाइप का कोई भी ऑर्गेनिक लोकल लेवल में अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कितना खाद ऑर्गेनिक डालने से आप बचा सकते हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ऑर्गेनिक को हम उपयोग करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मृदा का जितना भी क्वालिटी है
0: उसको बनाए रखता है,
1: उसको बना के रखता है
0: जी। तो किसान भाइयों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हमारे बीच डॉक्टर निंटू मंडल सर थे और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आप सभी करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा मृदा के बारे में जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में जो मिट्टी है उसमें क्या कुछ कमी है या फिर कुछ तत्वों की अधिकता है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और बताई ही नहीं जाती हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं वो सारी भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, अगर कुछ परेशानी हो रही है आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है? तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि 90.8 FM। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन,

0: वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। जहाँ हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार अंकुर शिलाजीत पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव मोनेटा MSCS 13 मैक्स 58 पूसा 16 पूसा 20 पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजाइक पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी है JS335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो चौथी वेराइटी के बारे में है NRC

0: आरा, जिसे अहिल्या टू के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वेराइटी अहल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वेराइटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वेराइटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वेराइटी JH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वेराइटी JH95-60 है, इस वेराइटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वेराइटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरन एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वेराइटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोट तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज़ हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नेत्रजन, फास्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्लोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदलकर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रभावित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होती सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोप्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसिड फेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्लोरोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मैथोमॉक्स 40 ग्राम या टाइप्रो जोसफ 400 मिली लीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजीम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 PPM 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़ुआ की राजेंद्र मड़ुआ RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। और अनुशंसित मक्का की किस्में है सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8-30 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गला घुटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में. दोस्तों आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है. इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा. मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा.
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है.
1: उमा अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है. तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान गेहूं मक्का जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है. तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू है. तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है. और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में. तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फास्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. तो फास्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें और सस्य फसल जैसे धान गेहूं मक्का जौ इत्यादि.
0: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए.
1: जी फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है. और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे एटीपी एडीपी न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स. तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का. यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं पौधा है आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए. तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है जैसे कि कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ऊर्जा संचरण जड़ विकास आपकी फ्लावरिंग पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली.
0: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है.
1: जी हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है. ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़. तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट या जरूरी होती है. यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है. अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी. तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में. और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है. और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थितियां परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फॉस्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की, गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग, हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फॉस्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फॉस्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फॉस्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फॉस्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फॉस्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फॉस्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फॉस्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फॉस्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फॉस्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल, अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशियंट और मार्जिनल डेफिशियंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फॉस्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फॉस्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फॉस्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फॉस्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उसके आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉयल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर हैं जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होके जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है? हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहां पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहां पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फॉस्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, खांसी को खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज
0: मूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है
2: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है।

0: आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है। प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
5: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
4: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
10: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं

0: कैसे बताएगा?
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
2: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
4: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
5: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
7: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जल्दी है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला?
6: अब समझ आए कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
9: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
7: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
6: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
8: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
9: जी सर।
8: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
6: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
8: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
7: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
8: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
6: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
8: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
7: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी, और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
8: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
10: सिरों के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
11: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
11: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: तो इसका हल क्या है?
11: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
10: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
10: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
11: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
10: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त?
10: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
10: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
10: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी, तो इसका हल क्या है?
10: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर, इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़ुआ की राजेंद्र मड़ुआ RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 8:30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड, डार्क रेड, अर्का, कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूलें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं. तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है. तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार.
0: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से. मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है.
1: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है. आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं. और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है. इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है. इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है. बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है. इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज. बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है. यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं. और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं. इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं. और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है. बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं. बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं. बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं. और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं. तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं. तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं.
0: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं.
1: जी जी जी.
0: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है.
1: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है. और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं. और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है. इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है. और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है. बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है. आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है. और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है. लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा.
0: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो.
1: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है. इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है. और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कढ़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है। इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
2: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
2: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
1: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
2: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
2: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
1: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
2: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
1: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहां मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है, तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
2: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
5: खांसी?
6: हाँ।
5: इसको तो एक आध महीना हो गया।
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
0: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए और टीबी को हराए। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त RJ उमा। दोस्तों आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालात बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
9: सेहतिया भैया सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
11: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। यह बीमारी ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
9: सेहतिया भैया ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
11: आरजे उमा आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
9: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
11: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
9: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
11: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
9: सेहतिया भैया, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
11: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
9: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
11: हाँ, किसी को भी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए भले लक्षण हो या ना हो।
9: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
11: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नज़दीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
9: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
11: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
9: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
11: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
9: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
11: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
9: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
11: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीबी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
9: भैया, कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
11: यह भी गलत है। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
9: भैया, ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
11: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज, यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
9: भैया, और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते हैं।
11: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है, इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
9: भैया, लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
11: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है, जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है, ऊपर से 1,000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है।
9: पर भैया, कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
11: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
9: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
11: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
9: और भैया, टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
11: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
9: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए, आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
11: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था, उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
9: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
11: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे, आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
9: सच में से अतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
11: हाँ उमा, बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
9: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों, याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
11: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार हमारे किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है FM ग्रीन। तो आज उन्नत कृषि में हम बातें कर रहे हैं प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर संगीता श्री, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान शाख एवं पुष्प विभाग से। तो सबसे पहले हम संगीता श्री मैम का स्वागत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद अनु।
6: मैम, प्याज की वैज्ञानिक खेती, और प्याज हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितना मायने रखता है। प्याज अगर सब्जियों में हम ना डालें तो सब्जी जो है वो फीकी फीकी लगती है। तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ फायदे भी हैं प्याज के, और अगर बात करें हम आज इसकी वैज्ञानिक खेती की, तो वैज्ञानिक खेती के बारे में आज पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी 90.8 MHz पर, यानी इसी फ्रिक्वेंसी पर। तो सबसे पहले कुछ बातें, कुछ इसके महत्व के बारे में आइए जान लेते हैं मैम से। मैम, प्याज के महत्व के बारे में, ये डेली लाइफ में कैसे हमारे लिए गुणकारी है, और साथ ही एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसमें ये कैसे लाभदायक होता है वो बताएं।
8: किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। मैं डॉक्टर संगीता श्री, मैं आपको आज प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको इसके तमाम महत्वों के बारे में बता दूं। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खेती के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग सलाद, सब्जी, अचार एवं मसाले के रूप में किया जाता है। किसान भाई, प्याज की ऑर्गेनिक खेती कर

0: ना केवल अच्छी उपज ले सकते हैं बल्कि अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्यात भी कर सकते हैं और पर्यावरण तथा मिट्टी को दूषित होने से भी बचाया जा सकता है। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है जब जलवायु ठंड होती है। इसके लिए कोई भी खेती के लिए प्रभेद बहुत मायने रखता है, तो हम सबसे पहले प्रभेदों का चयन करते हैं। प्याज की अनेक स्थानीय किस्में हैं जिसमें कंद के आकार, फसल की परिपक्वता अवधि व तीखेपन में भारी भिन्नता पाई जाती है। प्याज की किस्मों को उनके छिलकों के रंग के अनुसार लाल, सफ़ेद व पीला तीन ग्रुप में विभाजित किया जाता है। लाल छिलके वाली किस्मों में पूसा रेड, एग्रीफाउंड रेड, N53, N404, नासिक रेड, पूसा रतनार, पूसा माधवी और सफ़ेद छिलके वाली किस्मों में पूसा वाइट, फ्लैट, पटना सफ़ेद आदि हैं व पीले छिलके वाली अर्ली ग्रानो, अर्ली येलो ग्लोब, अर्का पीताम्बर प्रमुख हैं। प्याज की बुआई सीधे खेत में बीज बोकर भी की जा सकती है, परंतु अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव रोप तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। प्याज का 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। पहले से तैयार खेत में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रोपण कर देना चाहिए। रोपण के लिए लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा रोपण के बाद सिंचाई करना कतई ना भूलें। खेत में मोल मोल हल का उपयोग करना चाहिए और पिछली फसल के बचे हुए भाग, खरपतवार, पत्थर एवं मिट्टी के ढेलों को हटाने के लिए 3 से 4 बार कल्टीवेटर का उपयोग करते हुए जुताई का कार्य करना चाहिए। अंतिम तैयारी के समय खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा मिलाकर सिंचाई हेतु क्यारियां बना लेना उत्तम होता है। प्याज की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें 1 हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, नत्रजन 100 से 120 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम व पोटाश 60 किलोग्राम तथा सल्फर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गंधक को रोपाई के समय आधारीय मात्रा के रूप में डाला जाना चाहिए। रोपाई से 45 से 60 दिनों के बाद 0.5% की दर से जस्ता का पर्णीय छिड़काव करने से प्याज कंदों के पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार आता है। मृदा परीक्षण के बाद यदि किसी भी सूक्ष्म तत्व की कमी का पता चलता है तब उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी कमी को दूर किया जा सके। पौधों के वृद्धि के चरणों के दौरान यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है तो पत्तों या मिट्टी में संबंधित पोषक तत्वों का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। सामान्य रूप से 10 से 12 दिन के अंतराल में 12 से 15 सिंचाई पर्याप्त रहती है। प्याज में सदैव हल्की सिंचाई करें। पौधों की बढ़वार एवं कंद बनते समय मिट्टी में नमी रखना नितांत आवश्यक है।
1: तो यहाँ पर मैम ने आप सभी को बताया श्रोताओं कि एक स्वरूप आपके सामने रखा है, वो है वैज्ञानिक खेती प्याज की, और आपने जाना कि प्रभेद कैसे होने चाहिए, बुआई की विधि कैसी होनी चाहिए और सिंचाई आपको कितने दिनों के बाद करना चाहिए। तो इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारी फसलों के साथ साथ खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे फसलों की जो पोषक तत्व हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं और इससे जो पोषक तत्व हमारे जो मेन फसल होते हैं उन्हें जो मिलना चाहिए वो ही मिल पाता है। तो इससे निजात पाना भी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही अगर कीट जो लग जाते हैं फसलों पर तो वो भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो मैम हम इस सभी चीज़ों से अपनी फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?
0: प्याज फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने ठीक ही बताया अनु जी। प्याज फसल में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से पहले अथवा रोपाई के समय पेंडामिथिलीन 30% ईसी का 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं तदोपरांत रोपाई के 40 से 60 दिन पश्चात हाथ से एक बार निराई गुराई करने से इससे निजात पाया जा सकता है। जहां तक कीट प्रबंधन की बात है, प्याज में थ्रिप्स व माइट प्रमुख कीट हैं जो इसमें लगते हैं। थ्रिप्स छोटे और पीले रंग के कीड़े होते हैं जो पत्तियों पर सफ़ेद धब्बा बना देते हैं। ये कीड़े पत्तियों का रस चूसते हैं। फसल को थ्रिप्स नामक कीड़े से बचाने के लिए प्रोफेनोफॉस 0.1% या इमिडाक्लोरपीड 17.8 इसी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। माइट हेतु डाइकोफॉल 0.2% या सल्फर 0.05% का छिड़काव करना लाभदायक होता है। छिड़कने वाले घोल में चिपकने वाले द्रव का प्रयोग उपयुक्त होता है। इससे दवा पत्ती पर टिकी रहती है, नीचे नहीं ढलक जाती है। रोग की जहाँ तक बात है, इसमें जो सबसे पहले इसमें पौधशाला में जो रोग लगते हैं, आइए उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। प्याज में के पौधशाला में अक्सर आद्र गलन नामक रोग लगता है जो कि एक कवक द्वारा होता है। यह पौधशाला में बीज अंकुरण के बाद पौधों की बरवार के समय प्रभावित करता है। कवक के तंतु पौधों के जमीन वाले भाग से प्रवेश कर पौधों को प्रभावित करते हैं, जिससे पौधों पीले पड़ने लगते हैं। पौधों का जमीन से लगने वाला भाग सड़ने लगता है और फिर पौधे सूखने लगते हैं। लगातार एक ही स्थान पर पौधा तैयार करने से रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग में 10-90% तक पौधे नष्ट हो जाते हैं। अधिक नमी तथा 24-30 डिग्री सेल्सियस तापमान इस कवक की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। नर्सरी में यदि जल निकास अच्छा ना हो तो इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। नियंत्रण हेतु बुआई के समय 2-2.5 ग्राम कप्तान बेविस्टिन या थीरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बीज बुआई करने से लाभ होता है
1: जी।
0: इसके अलावा किसान भाई प्याज में की खड़ी फसल में तथा प्याज में भी कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे पर्पल ब्लॉच, चिम्फिलियम ब्लाइट, झुलसा रोग, सर्कोस्पोरा, पर्ण धब्बा एवं चूर्ण फफूंदी रोग लगते हैं। नियंत्रण हेतु बुआई के समय 2 ग्राम कप्तान या 2 ग्राम थीरम या वेविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित कर बोना चाहिए। खड़ी फसल में मैनकोजेब 0.25% या हेक्साकोनाजोल 0.1% या प्रोपिनाकोनाजोल 0.1% का लाइनों में ड्रेंचिंग तथा पौधों पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छिड़कने वाले घोल में चिपकने वाले द्रव्य का अनुप्रयोग अवश्य करें।
1: तो ये तो बात हो गई कि जब हम प्याज की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो उसमें जो समस्याएं आती हैं वो ये होती हैं और उनका समाधान आप कैसे करें, तो ये आपको मैम ने बताया। और मैम अंत में बारी आती है इसके भंडारण की और उपज, साथ ही साथ भंडारण कैसे करें हमारे किसान भाई प्याज की, तो ये बताएं हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को।
0: प्याज में कंदों को समय पर खुदाई तथा भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उपज तथा गुणवत्ता दोनों को ही प्रभावित करता है। हरी प्याज के लिए 60 से 90 दिन बाद खुदाई करनी चाहिए। पकी प्याज के लिए 125 से 150 दिन बाद खुदाई कर सकते हैं। गर्दन का नरम होना, पत्तियों को नीचे की तरफ मुड़ना, मुरझाना व बदरंग होना फसल के पकने का लक्षण माना जाता है। समय से पहले खुदाई करने से अंकुरण की समस्या तथा विलम्ब से करने से जड़ लंबे होने की समस्या होती है, अतः खुदाई समय पर करना आवश्यक होता है। गांठों को निकालने के बाद 2-3 दिन तक छाया में सुखाना चाहिए, इससे प्याज की टिकाऊ क्षमता बढ़ती है। प्याज को सुखाने के बाद इसको खुली हवा वाली शुष्क जगह में भंडारण करना चाहिए। इस तरह से रखने पर हम इसे 4-6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार उन्नत तकनीक अपनाकर प्याज से प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 300 कुंतल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: तो हमारे श्रोताओं, आपको पता चल गया होगा कि प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है और इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको डॉक्टर संगीता श्री मैम ने बताया। तो आशा करते हैं आप ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। और अगर प्याज की आप खेती करना चाहते हैं तो उनमें आपको छूट रहा है तो आप इस कार्यक्रम को सुनकर ज़रूर उसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 8-30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर सब, आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है। परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती न करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं। और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं।
0: जी सर, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
1: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फ़ायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है। और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी विधि बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
0: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
1: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें। और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पर कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं, उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है। पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है। और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
1: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ पर खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो जहाँ जिसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर हम धान की प्रभेद की बात करते हैं तो हम लंबी अवधि की किस्म को भी लेते हैं और साथ ही साथ कम अवधि के किस्म को भी लेते हैं। हम अगर प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी, MTU 1001, सबौर अर्जल, सहभागी, शुष्क सम्राट, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
0: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
1: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई, और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम है जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
0: जी सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 kg नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर 50 से 60 केजी आप फॉस्फोरस की मात्रा और 60 केजी पोटाश की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की एक तिहाई मात्रा तथा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना ना हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पायरेजो सल्फिरॉन, ये पायरेजो सल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। ये खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पायरेजो सल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोप है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हमारे यहाँ की पायरेजो सल्फ्यूरॉन एवं बिसपायरीबैक सोडियम का हम इस्तेमाल है जो कि बुआई के 15 से 20 दिन के बाद करें तो हम अधिकतम घासों का है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि सिंचाई एवं जल प्रबंधन। जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से सामान्यतः है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है, तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से 1 महीना पर पहले कर देना चाहिए। सामान्यतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सामान्यतः हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं, तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहां उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में नमी उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है। तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: एकांत वशिष्ठ, प्रोडक्शन असिस्टेंट अमरजीत सरकार, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विमलेश चौधरी. दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT, न्यू दिल्ली, इंडिया.
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए.
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा.

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। वैसे मछली पालन की बात करें तो आज स्वरोजगार की बात करें तो उसका एक हिस्सा बन गया है। लोग मछली पालन करके आय में वृद्धि कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर MZ होदा, जो आपको बताएंगे एकीकृत मछली पालन के बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको बताएंगे, जैसे कि आप अगर एकीकृत मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। किसान भाइयों और युवाओं, विशेषकर मछली पालन आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला एक जरिया है और बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पर मछली पालन की शुरुआत हुई है और हम लगभग आत्मनिर्भर हो चले हैं
2: जी।
4: जब हम एकीकृत मछली पालन की बात करते हैं तो हम लोग सामान्यतः जो हमारे बिहार के परिवेश में 6 प्रकार की मछलियाँ हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये जो मछलियाँ हैं वो आपको एक साथ एक तालाब में कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम लोग मछलियाँ जितना ज़्यादा तालाब में डालेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, जबकि उल्टा होता है। हम लोग बीज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब जो 6 मछलियाँ हैं आप देखेंगे तो तालाब में 3 सतहों पर भोजन होता है, एक ऊपरी सतह, दूसरा मध्यम सतह और तीसरा निचली सतह। ऊपरी सतह पर जो हमारी मछलियां हैं, जो हमारा सिल्वर कार्प है और कतला है, वो वहां से भोजन लेती हैं। मध्यम सतह में तालाब के जो हमारा रोहू है और हमारा ग्रास कार्प है वो वहां से भोजन लेती हैं, और जो सबसे निचली सतह है वहां कॉमन कार्प और मिरिका, जो मिरिगल आप लोग बोलते हैं किसान लोकल लैंग्वेज में, वो वहाँ से भोजन लेती हैं। ये तीनों का सतह का अगर आप सबसे ज़्यादा उत्पादन या उत्पादकता लेना चाहते हैं, ये तीनों की बराबर मात्रा हम लोगों को तालाब में पालनी होती है।

0: जैसे कि आप हम लोग मानते हैं कि एक एकड़ का अगर तालाब है तो उसमें तीन तरह के मछली के बीज आते हैं, एक जो 72 घंटे का होता है उसको हम लोग स्पॉन कहते हैं, जो लगभग 15 से 16 दिनों का होता है उसको हम लोग फ्राई कहते हैं, और जो 36 से 40 दिनों का होता है उसको हम लोग अंगुलिका कहते हैं। हम किसान भाइयों को कहेंगे कि वो कभी भी अपने तालाब में स्पॉन का संचय सीधे बड़े तालाब में ना करें, हमेशा अगर स्पॉन के करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है, उसका एक नर्सरी तालाब बनाकर वहाँ संचय करें और फिर पुनः उनको बड़े रेयरिंग तालाब में डालें। सबसे बेहतर होता है कि या तो फ्राई, और उससे भी अच्छा होता है कि फिंगरलिंग या हाफ ईयरलिंग जो मछली है उसको डालें। एक एकड़ में अगर आप अपनी मछलियों को डालना चाहते हैं तो जो अगर फ्राई डालते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार फ्राई जो मछली का बच्चा है, जो जो 6 मेजर प्रजातियां हमको हमने आपको बताई हैं उनका डालना है, और उसमें ध्यान रखना है कि 30% उसमें वो रोहू और ग्रास कार्प का बच्चा हो, 30% कतला और सिल्वर कार्प का बच्चा हो, और 40% हमारा मिर्का और कॉमन कार्प का बच्चा हो। ये तो फ्राई की संख्या हो गई। अगर हम अंगुलिका की संख्या एक एकड़ में डालना चाहते हैं तो वो हम 4000 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, और उसका भी 30% 30% और 40%। जब हम ये डालेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं एकीकृत मछली पालन। और इससे आपको ध्यान ये रखना है कि मछलियों को उसकी वजन का 2% भोजन कम से कम प्रत्येक दिन आवश्यकता होती है
1: जी।
0: और हमारे किसान भाई, आप जो भोजन का पैसा बचाते हैं इस वजह से आपकी उत्पादकता में बढ़ोतरी नहीं होती है और अवांछित लाभ आपको नहीं मिलता है, इसमें कभी कंजूसी ना करें
1: जी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं मछलियों के समायोजन की, तो इसमें कौन कौन मछलियों का समायोजन हमें करना चाहिए?
0: देखिए, हमने अभी बृहत रूप में बता ही दिया है कि हमें तालाब में जो हमारे ग्रामीण परिवेश हैं उसमें ये 6 प्रकार की जो मछलियाँ हमने बताई हैं, रोहू के साथ हमेशा ग्रास कार्प का समायोजन होगा, कतला के साथ हमेशा सिल्वर कार्प का समायोजन होगा, और मिर्का के साथ हमेशा जो है कॉमन कार्प का समायोजन होगा। ये तीनों, जब तक ये तीन जो मेरा इंडिजिनस कार्प है और 3 एग्जोटिक कार्प, इसका समायोजन अगर हम उचित करेंगे तो तालाब की जो भोजन की व्यवस्था है तालाब की, और साथ में जो आप देंगे उसमें आपको उत्पादकता में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा
1: जी। और डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं सावधानियों की। अभी आपने कहा था कि खाना जो आपने अभी क्वांटिटी बताया उस हिसाब से अगर किसान भाई नहीं देते हैं तो उनकी उत्पादन में कमी आती है, क्या इसके अलावा भी कुछ सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए किसान भाई, बिहार में जो सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है वो बीज के सिलेक्शन के समय मछली पालन में। हमारे किसान भाई ये क्या करते हैं कि जनरली जब बाढ़ का समय आता है तो नदियाँ चौड़ मन से सीधा सीधा क्विंटल के भाव में वो मछलियों को खरीदते हैं और सीधे अपने तालाब में डाल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। आप जब कभी भी मछली पालन की सोचते हैं और इस तरह के जहां पर डिस्क्रिप्ट जो प्रजाति मछली की है वहां से नहीं मिलता हो, और जो चौर मन बाढ़ के समय जो लोकल कलेक्शन होता है मछलियों का, उससे अगर आप अपने तालाब में डालते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी उसको सीधे अपने बड़े तालाब में ना डालें, उसको कभी एक छोटे स्थान पर रखें। हम प्रायः ये देखते हैं कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ मरती हैं बच्चे, तो सबसे पहले तो वो जितने तरह के मछली मरना होगी वो जाल के खींचने के वजह से होता है, उसके गल्फर में थोड़ा घाव हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ऐसी साली मछलियाँ हैं जो कार्निवोरस होती हैं, जो मछलियों को खाती हैं बहुत। जैसे कि आप एक कॉमन एक बुआरी है, बुआरी को उसके वजन का लगभग 2-3 गुना भोजन प्रत्येक दिन आवश्यकता होती है। तो अब आप सोच लीजिए कि जब आप बाढ़ का मछली संचय करते हैं और उसमें 5-10 बुआरी के बच्चे आपको साधारण तालाब में चले जाते हैं, तो हम प्रायः ये देखते हैं कि जब हम मछली हार्वेस्ट करने जाते हैं तो सिर्फ हमें बुआरी मिलता है, बाकी मछलियां नहीं मिलती हैं। तो कभी भी इस तरह का बुआरी है या फिर थाई मांगूर है, इस तरह के मछलियों का संचय या बीज अपने जो वांछित मछली पालन करना चाहते हैं उसमें कभी ना आने दें, इसकी आपको हमेशा सावधानी बरतनी है
1: जी। तो ये कुछ सावधानियाँ थी, अगर आप एकीकृत मछली पालन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपनाएं, और इस प्रकार अगर आप यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो भी बातें आपको बताई हैं आप उसका अनुसरण करते हैं तो उत्पादन में बिल्कुल कमी नहीं आएगी और आप मछली पालन में और भी आगे बढ़ सकते हैं।
0: किसान भाई, एक चीज़ आप जान लें कि खाना एक ऐसा कंपोनेंट है मछली का। आप लोग ये सोचते हैं कि मछलियों को तालाब में आपने डाल दिया वो मछलियां स्वतः बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक एकड़ के तालाब में लगभग 65,000 रुपए के आसपास का अगर खाना मछली का क्या है? मछली का खाना सरसों की खल्ली है, मछली का खाना राइस ब्रान है जो गुंडा आप लोग कहते हैं वो है, और एक मामूली सा मिनरल मिक्सर खनिज मिश्रण जो एग्रीमिन फोर्ट होता है। आप अपने तालाब में क्या करें, बहुत सरल तरीका है भोजन देने का कि अपने तालाब में दो जगह बांस को गाड़ दें, 10-15 किलो सरसों की खल्ली, 10-15 किलो राइस ब्रान और 100 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर जो एग्रीमिन फोर्ट और वगैरह बहुत सारे नाम से मिलते हैं, उसको मिला करके एक जूट के बोरे में बांध दीजिए और जूट के बोरे के नीचे एक छोटा सा छेद कर दीजिए और छेद करने के बाद उसको आधा पानी में डुबा दीजिए, आधा ऊपर टांग दीजिए, देखिएगा सारी मछलियाँ तालाब की वहाँ आएंगी और खाएंगी। इसका बहुत सरल तरीका है खाना देने का ये, जब बोरी भर जाए, ख़त्म हो जाए, आप पुनः उस बोरी को भर दें। आप जब पानी का रंग भूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें भोजन की मात्रा अत्यधिक हो गई है, आप खाना देना बंद कर दीजिए। फिर देखिएगा सामान्य पानी का कलर हो जाएगा और आप देखेंगे कि एक एकड़ के तालाब में कम से कम 2.25 लाख रुपए तक की शुद्ध लाभ आप कमा सकते हैं जो किसी भी खेती के प्रणाली में आपको नहीं मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी।

आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देव की, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 830 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डाले। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिसे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गला घुटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों आज के टाइम पे ना हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीज़ें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो ज़रूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
1: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज़ करें। जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है उसमें हम लोग डेटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में। जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
0: तो सर भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है?
1: क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है कभी सुखाड़ आ जाता है। तो अगर हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे वो कृषि से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत आसान है ये समझना, अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा, और जो अभी जो करेंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
0: सर जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
1: बिल्कुल,
0: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है नहीं, क्या ये सच है?
1: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है। जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है। मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजोन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए। ऐसे हम कितना

0: पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में, अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े तो। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पर कर पाएंगे।
1: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी है?
0: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें, तो जैसे जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है, ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
1: तो सर क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हैं?
0: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना, उसमें क्या भाव चल रहा है, ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पर स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
1: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
0: सबसे बड़ा फ़ायदा तो इससे ये होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपकी मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
1: सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
0: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की ज़रूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज़ हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
1: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में है, तो क्या AI स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज़ करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को। आपको बार बार उसमें जानकारी आते रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
1: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
0: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नाम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
1: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज़ को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, हर साल यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें।
1: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
0: तो ये ट्रेनिंग जो है, इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है। अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी।
1: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद को।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, IoT के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करते हैं?
0: तो IoT जो है, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लीजिए कि कुछ भी मेज़र करना हो।

0: मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेजर करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेजर करना हो, ये सब चीज़ को हम IoT से कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए, मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है। IoT जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज़ IoT के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
1: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
0: तो स्मार्ट सिंचाई में भी IoT का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब जब ज़रूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी। आप जानते होंगे डीजल का भी यूज़ होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज़ करें तो।
1: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है, एक डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है, अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है, ज़रूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है kisan.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
1: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
0: बिल्कुल, हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी। जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई-निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए, AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें, और फिर आपको जवाब देगा। ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
1: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
0: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में, और ख़ासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे, या फिर जो भी ग्रॉसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराना का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है, ब्रोकोली है, ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है, और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से। और आप देखेंगे कि 12 बजते

0: इससे इसमें AI यूज़ किया जाता है, इसके लिए आपको ग्रीन हाउस में होता है, ये पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
1: तो अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है?
0: चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ़ नहीं है यूज़ करने में। आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए ये रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए, क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
1: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
1: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर, इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूलें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। और अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें और खरपतवार नियंत्रित रखें। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड, डार्क रेड, अर्का, कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूलें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं और बीजों के बारे में हम जानकारी पिछले भाग में लिए थे। धान के बीजों का चयन आप किस आधार पर करें, चाहे अवधि हो, लंबी अवधि, मध्यम अवधि या कम अवधि, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार डॉक्टर सतेंद्र तोमर जी से, जो कि प्लांट ब्रीडिंग से हैं ये और एक कहते हैं कि एक ब्रीडर हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछले बार बात किया था कि 110 दिन की अवधि में या फिर एक आइडियल कंडीशन में किस तरह के बीजों का वो चयन करें, किस्मों का चयन करें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम कॉमर्शियल वैल्यू की बात करें, क्योंकि किसान जो है वो उनके साथ चैलेंज होता है कि उनके धान में यील्ड अच्छा हो और परेशानी कम हो, तो ऐसे में मार्केट पे वो सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि वो मार्केट से ही उनको बीजों को उपलब्धता करनी है। जो उनको किसी ब्रांड ने बता दिया कि इसकी इतनी ज़्यादा यील्ड है, वो उसी को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में हम ये भी चीज़ आप बाद में आप ज़रूर उसमें इंक्लूड करें कि अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप कैसे लें। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्रोताओं को बता दें, चूँकि ये कार्यक्रम हमें FM ग्रीन से भी हम प्रसारित कर रहे हैं, तो जो FM ग्रीन सुनना चाह रहे हैं किसान भाई और उनके पास ये नहीं है उपलब्ध, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो रक्षा, बीजों की उपलब्धता पे आज आ जाते हैं कि ये बीज कैसे उपलब्ध होगा। आपने कई सारे बीजों को बारे में बताया और आगे भी आप आज बताएंगे, तो ये बीज उन तक कैसे पहुंच पाएगा किसान भाइयों तक?
1: किसान भाइयों, जहाँ तक बीज की उपलब्धता का सवाल है, तो इसमें जितनी भी किस्में बिहार के लिए संस्तुत हैं, उसमें से ज़्यादातर किस्मों का बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया जाता है और यहाँ बीज विक्रय केंद्र पे वो उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र हैं, उन पे भी ये बीज उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी जो किस्में हैं, संकर किस्मों को छोड़ के, किसान भाई अपना खुद का बीज भी बना सकते हैं। तो किसान और खुद का बीज भी वो अगर अच्छी तरह से भंडारण करते हैं, उचित नमी उसमें करके रखते हैं, तो अगले साल के लिए वो बीज अपना खुद का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर बीज किसान भाइयों को लेना है, ज़रूरत है, तो उसके लिए 25 मई के बाद से बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जो मेन सेंटर है, हेड क्वार्टर है सबौर में, वहाँ उपलब्ध रहेगा। और जितने भी केवी के हैं, हर जिले में एक केवी के है, जितने केवी के हैं सारे केवी के पर भी ये बीज उपलब्ध रहेंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो किसी भी केंद्र पे संपर्क करके उस बीज की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं।
0: किसान भाइयों, ये बीज उपलब्ध हो जाएगा 25 मई से और हमेशा ये 25 मई के आसपास ये बीज सालाना उपलब्ध शुरू हो जाता है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो विक्रय पटल है, बीज विक्रय केंद्र, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही सभी जिले, यानी कि जो हमारे जो 20 जिले हैं बिहार में, उन सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों से ये बीज आप खरीद सकते हैं। अधिकांश बीज उपलब्ध हैं और हम कुछ और बीजों के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, जो कि सबसे पॉपुलर है, जो अधिसंख्य किसान जो है उसको लगाते हैं, जिसमें श्वेता है, जिसमें मंसूरी है, कुछ सुगंधित धान है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं श्वेता के बारे में, कि बिहार में लगभग आधे से ज़्यादा किसान एक समय में श्वेता लगा रहे थे और एक बार श्वेता में थोड़ी सी समस्या देखी गई एक वर्ष, तो उसके बाद वो वैकल्पिक तौर पर दूसरे किस्मों का भी चयन किए, जिसमें कि उन्होंने सबौर श्री को लिया था हाथ में हाथ। तो ऐसे में वो बताएं किसान भाइयों को कि जो श्वेता है उसके पैरेलल और कौन कौन से वैरायटीज़ हैं, और ये श्वेता में आखिर ये समस्या आई थी, तो क्या ये बार बार आने की संभावना है?
1: इसमें देखिए, ऐसा है जो जो श्वेता, राजेंद्र श्वेता किस्म है, उसकी आपने बात की, तो ये मध्यम अवधि की किस्म है, 135 से 140 दिन में ये पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 कुंटल आराम से मिल जाती है। दाना, जैसे कि मैंने बताया, सबसे जो सबसे अपेक्षित या सबसे जो पॉपुलर चावल है वो मध्यम पतला चावल होता है, और मध्यम पतला चावल ही राजेंद्र श्वेता का है। इसके अलावा जैसे किसान भाई सोनम एक वैरायटी लगाते हैं, तो सोनम के बिल्कुल सोनम के जैसा ही चावल राजेंद्र श्वेता का है, तो इस ये तो वजह रही इसके पॉपुलर होने की, क्योंकि इसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलता है, दाम ज़्यादा मिलता है और किसानों के खेत पर से ही ये बिक जाती है, तो इसलिए ये किसानों में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। जहाँ तक इसकी समस्या की बात है तो एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बीमारी होती है, वो इसमें एक वर्ष देखी गई थी, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर बार उसमें ये चीज़ देखा नहीं गया है, पहली बात, और दूसरी बात उसका क्योर कर सकते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है, किसान भाई दवाई उपलब्ध है उसके लिए, तो फूल आने के से 10-20 दिन पहले किसान भाई अगर एक सुरक्षात्मक एक स्प्रे दवाई का कर देंगे, उसमें फफूंदी जनक और जीवाणु नाशक, फफूंदी नाशक और जीवाणु नाशक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसको किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी को उसमें आने से रोका जा सकता है, और किसान भाई इसको आराम से इस्तेमाल करें, इसमें कोई और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है
0: जी। तो इसके बाद हम श्वेता जो है सबसे पॉपुलर वैरायटी है बिहार के कंडीशन में, सबोर श्री के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें कि सबोर श्री अगर वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वक्त है सही, और ये इसकी क्या खासियत है?
1: सबोर श्री की जहाँ तक बात है, सबोर श्री का मैं बताऊँ, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई किस्म है, मध्यम अवधि की किस्म है, और इसकी बिजाई भी मध्यम अवधि के हिसाब से ही हम लोग 10 जून से लगा के और 25 जून के बीच में इसकी बिजाई करते हैं, और इसका दाना जो है वो मध्यम पतला ही होता है, इसकी उपज राजेंद्र श्वेता से भी ज़्यादा है, उपज के मामले में ये 55 कुंटल तक आसानी से ये प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है, तो इसीलिए ये अभी पॉपुलर हो रही है, किसानों के बीच में ज़्यादा फैल रही है, तो किसान भाई इसको आराम से लगा सकते हैं सबोर श्री को, और निश्चित रूप से अधिक उपज मिलेगी
0: जी। तो ये सबोर श्री भी जो है अधिक उपज देने वाली है। तो अगले जो हम इसमें बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, की बीज की जो दर है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो भी मानक किसान भाई को आप सजेस्ट करें कि उसमें उनको कितना रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीज दर है ये बहुत ज़्यादा किसान भाइयों में ये इच्छा रहती है कि हम कितना बीज हम डालें, अगर हमें 2 एकड़ में खेती करनी है, बीघा भी बोलते हैं, तो उसको हम कितनी बीज की ज़रूरत होती है, और उसमें जो बीज डालने जाएँ तो उसके पहले बीजोपचार ज़रूर करें, इसके बारे में भी ज़रूर बताएँ।
1: बीज दर की जहाँ तक बात है, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि बीज दर का जो है ये आप किस विधि से धान को लगा रहे हैं ये उस पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो जैसे जो परंपरागत हमारी विधि है धान लगाने की, रोपाई विधि, उसमें हम कादो करते हैं, उसके बाद पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर खेत में कादो करते हैं, उसके बाद वो नर्सरी को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं 21 से 25 दिन के बीच की जो जब नर्सरी हो जाती है। तो इस विधि से अगर हम जाएंगे तो जब हम अगेती जो अगात किस्में हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बीज हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो लगभग 20 से 25 किलो के बीच में हम लोग बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पे हम इस अगात किस्मों के लिए हम लोग किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी कम रखनी है, 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएं, और पौधा एक से दो से तीन पौधा एक ही एक हिल में दो से तीन पौधा लगाना चाहिए, इसके बाद जो मध्यम अवधि की किस्में हैं उनका भी लगभग 20 केजी बीज 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की नर्सरी का तैयार करने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो सीधी बुआई है, अगर किसान भाई सीधी बुआई कर रहे हैं जो कि आजकल प्रचलन में है, उसमें लेबर की बचत होती है, इसके अलावा पानी की भी बचत होती है, तो उसमें अगर हम

0: जाएंगे तो 25 से 30 किलो के बीच में बीज हमारा उसमें लगता है। और इसके अलावा अगर श्री विधि से जाते हैं, श्री विधि में 10-12 दिन का की जो नर्सरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो श्री विधि में जो दूरी है वो 25x25 सेंटीमीटर की किसान भाई रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें
1: जी। तो ये बीज दर की बात हुई कि आप बीजों का जो चयन करते हैं तो उसमें कितना बीज आप इसमें डालें, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो सुगंधित प्रजाति है, जो किसान भाई शौकीन हैं, जो थोड़ा शौकीय तौर पे अपने लिए अच्छे वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी किस्में हैं जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से भी निकली हैं, जिसमें कि सबौर सुरभित है, तो ऐसे में आप उनको बताना चाहेंगे जो कतरनी लगाने की इच्छुक हैं, एक किसान भाई और भी ये उनके रहती है इच्छा कि जो कतरनी है वो भागलपुर के बाहर के क्षेत्र में भी ये पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें उनको क्या चुनौतियाँ आती हैं, तो उनको सुगंधित धान के बारे में ज़रूर बताएं कि सुगंधित धान का अगर वो चयन कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी उनके लिए उपयुक्त हो सकती है।
0: सुगंधित धान की जहाँ तक बात है तो सुगंधित प्रजातियों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है सबौर सुरभित। सबौर सुरभित एक अत्यंत पतला महीन इसका चावल होता है और पुलाव के लिए बहुत ही अच्छा ये सुगंधित चावल है, इसको किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्यम अवधि की किस्म 120-125 दिन में ये पक जाती है। इसके अलावा जैसे कतरनी की जो बात की तो बिहार में मैं बता दूं कि जो हमारे परंपरागत धान है उसमें एक कतरनी उसमें से एक है। इसके अलावा और भी परंपरागत धान है, जैसे हम अगर उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो सोनाचूर एक प्रजाति है, वो वहाँ पे चलती है, इसी तरह से चंपारण बासमती है। तो भागलपुर रीजन की अगर हम बात करें तो कतरनी यहाँ का एक परंपरागत धान है और ये सुगंधित है। सुगंधित होने के साथ साथ में ये फोटो पीरियड सेंसिटिव है। फोटो पीरियड सेंसिटिव का मैं बता रहा हूँ, फोटो पीरियड सेंसिटिव मीन्स जो प्रकाश अवधि है, दिन की जो अवधि है, सूरज की जो अवधि है, उससे इसका पुष्पन प्रभावित होता है। तो तापमान और प्रकाश अवधि ये दोनों मिलके इसके पुष्पन को प्रभावित करते हैं। ये इस को कतरनी को किसान भाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े में इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छी उपज प्राप्त होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा खाद रासायनिक खाद इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी बढ़वार ज़्यादा होती है और इसके गिरने का खतरा रहता है
1: जी। तो किसान भाइयों ये थी मुख्य जानकारी जो कि धान का बिजाई का समय चूँकि आ गया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सबौर का ये प्रयास रहता है कि आपको हर हाल में जानकारी आप तक पहुँचे। तो ऐसे में जब पैंडेमिक का दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर है, तो आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े, आपको जानकारी आपके घर बैठे मिले और आप अपने नज़दीकी बाज़ार या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विभिन्न केंद्रों से आप बीज की खरीदारी करें, क्योंकि बीज विक्रय जो है वो सरकार द्वारा खोली रखी गई है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि धान के बिजाई से लेकर धान की पूरी खरीफ सीजन शुरू हो रही है, तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो उसके जो नियम जो बनाए गए हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि कोविड के अनुरूप आप व्यवहार उसमें ज़रूर अपनाएं, क्योंकि गांव में भी कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, तो ऐसे में आप इन बातों का ज़रूर पालन करें। जो भी मजदूर भाई हैं, जो भी किसान भाई हैं, उनमें एक दूसरे से दूरी, साथ ही जो कृषि यंत्र है या फिर किसी तरह का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें सैनिटाइजर का भी साथ में आप रखें अपने पास में, न है तो आप पानी भी आसपास रखें और उसके जरिए उन बातों का पालन करके ही खेती में अपने आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले भाग में कुछ और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन।

0: बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
2: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
4: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
2: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
4: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं, और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं और DSR से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़े काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
2: पडलिंग यानी कि
4: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया हमने मिट्टी में और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हमने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए, सबसे खास

जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफी हद तक उस जमीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फर्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर
अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें, श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक

0: चीज का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्रीविधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्रीविधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्रीविधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्रीविधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकीनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के

0: जानलेवा लेवा बीमारी।
1: यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ़ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है। पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का। अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की, तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ओयस्टर मशरूम के बारे में, और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
5: थैंक यू मैडम।
4: सबसे पहले तो ओयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं।
5: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
4: जी।
5: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ओस्ट्रस प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू, तो ये डजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में, उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए, तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ओयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में
4: जी। तो ये तो होगी प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब की, अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है।
5: खास बात इसमें होती है, इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूम से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है, और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है
4: जी। मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर।
5: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
4: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए।
5: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सोजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
4: जी,
5: बिना कोई रुकावट किए हुए।
4: जी मैडम, मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती।
5: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम रोप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
4: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहिए।

0: कैसे स्टार्ट करें हम?
1: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की जी तो इसमें खेत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए। झोपड़ी में, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग मेज की खेती की जाती है ऑयस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया, तो गेहूं मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया, तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
0: जी।
1: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 45 सेंटीमीटर लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
0: जी।
1: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है, बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए, तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देखरेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
1: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 मीटर तक, चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल, अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल, 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसीलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई, जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को 1000 के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा, और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके, जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़, एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे, तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियाँ
0: तो ये कुछ सावधानियाँ हैं प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास और कैमूर, इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीजस्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन सभी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। जो श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करना सही माना जाता है। मड़वा की राजेंद्र मड़वा RU8 और RU3 ये किस्में अनुशंसित है और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। और ध्यान रखें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक डालना जरूरी होता है। अरहर के लिए अनुशंसित बीज की दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना न भूले। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। और अनुशंसित मक्का की किस्में है सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। मूंग के पौधे आपकी खेत के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे और खरपतवार नियंत्रित रखे। पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में 8:30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए एनओ 53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचे में जरूरी छटाई कर ले जिसे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराना न भूले। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप
कद्दूकस करके उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है। तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे, जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें, और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर।
तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
6: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
8: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से 4 कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
6: जी तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
8: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसिड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है, और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
6: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
8: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसिड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
6: और इससे बचने का कोई तरीका, जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
8: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसिड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
6: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
8: बिल्कुल।
6: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
8: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
6: अच्छा।
8: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत जरूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं, मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं, उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो, वहाँ पर जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
6: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों के लिए, आपका कोई अंतिम संदेश?
8: यस, तो उरद, मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उरद हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
6: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उरद की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद आपको भी।
6: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
10: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
11: खुद भी बचे देश भी बचाए।
12: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर PK सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

ना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपोर्ट से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर लें। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हमारी स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहा है। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लॉविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
2: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20x10 या 20x25, ये हमारा 20x10 या 20x15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए, सबसे खास बात। जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें यह ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉक नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20-25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारे श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का, मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं, उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद, मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने तीन बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
2: जी
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
2: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुवाई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और डीएसआर क्या होता है, डीएसआर में तो हम डायरेक्टली बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुवाई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक डेढ़ मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डिपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डिपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुवाई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुवाई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
1: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
1: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
1: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए।
2: फफूंदी नाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
2: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहाँ पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहाँ पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 kg जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 kg चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम, अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
2: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में

0: किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
1: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
0: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
1: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
0: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
1: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
0: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
1: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
0: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
1: जी,
0: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।

0: भीग नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किशन भाई, तो इसका मतलब लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूंगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम,
2: थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 g जो है उसमें प्रति 100 g में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक कि चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसको हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है, इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है। शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से

0: यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
0: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी 2 महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है, 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं, वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है, तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य में पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इसे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियां बनाती हैं, जिसपे लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है, तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है, और दिल्ली जैसे शहर में पैक्ड पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं।

0: तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उस फलों को आप अच्छे से धो कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं भफा करके उसको रख लेते हैं ठंडाने देते हैं और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं
1: चासनी।
0: उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम क्योंकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर के आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालें तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं। ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम ये तो कच्चे आम का हो गया यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा कर लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2-3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेटकर खौलते पानी में 5-10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5-2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए, उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
2: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
1: जी,
2: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
1: क्या
2: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
1: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
2: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हो, पत्तियाँ हो, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो, तो उसका जो है अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पर भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं, परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
1: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपकी सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं? कैसे करें?
2: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं
1: जी।
2: लीची के केस में हम बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
2: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके, जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं। तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें। जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें, उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवम्बर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है, उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। आम में 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवम्बर माह में करें
1: जी।
2: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डायबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समस्या सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें, उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डायबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें, और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए, और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो

2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना ले कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा।
हमारे बहुत सारे साथी सोच

रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
2: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2-3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
2: जी तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10-20 जागरूक किसान जो हैं उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
2: जी जरूर। तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
1: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
2: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और NABARD विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और NABARD क्रेडिट गारंटी देते हैं। इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
2: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता ले।
2: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
2: जी किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।